0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.
1: President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।

0: चलिए तो आज अब हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। तो मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, कौन सी कहानी मैंने पहली कक्षा में पढ़ाई मुस्कान?
1: दो गौरैया।
0: हाँ, कौन सी कहानी पढ़ाई तन्मया जी?
1: दो गौरैया।
0: उसके लेखक का नाम बताइए।
1: भीष्म साहनी।
0: हाँ जी, तो भीष्म साहनी के मैंने आपको शुरू कर दिया था ना। मैंने क्या बताया था पहली कक्षा में कि इस कहानी में पिताजी किसके बारे में बोल रहे हैं? आंगन में कैसे पक्षी हैं, उनके घर में चूहे हैं, उनके घर के चूहे उनको रात में सोने नहीं देते, उनको तंग करते हैं, कभी डिब्बे खुलते हैं, कभी प्याले टूटते हैं, यहाँ तक मैंने आपको बताया था, राइट?
1: हाँ जी।
0: हाँ जी। अब इससे आगे, तो एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। ओके, 20 चूहे हैं घर के अंदर, तो उसमें से एक चूहा जो अंगीठी, मालूम है बच्चों, अंगीठी को जिसको आप अंग्रेजी में फायर पॉट बोलते हो, उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आग दहकाने का बर्तन या चूल्हा। आमतौर पर ये मिट्टी, लोहे या पीतल की बनी होती है और इसमें कोयला या लकड़ी जलाई जाती है। आजकल तो हमारे घर में गैस है, राइट? पहले जमाने में जब गैस नहीं थी तब इसका इस्तेमाल किया जाता था। किसका? अंगीठी का, जिसको आप अंग्रेजी में फायर पॉट बोलते हो, मगर हिंदी में हम उसको फायर पॉट नहीं बोलते, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ये क्या होती है? एक आग दहकाने का बर्तन। मेरी जो मम्मी थी ना, हम लोग ने अंगीठी देखी है, अंगीठी के ऊपर हम लोग खाना बनाते थे, मैंने देखी है, आप लोग ने देखा है, आपके यहाँ पर भी होगा ना, चूल्हा जिसको आप मलयालम में अडप बोलते हो ना, आपने
1: हाँ,
0: देखा होगा, लकड़ी से
1: हाँ
0: जलाया जाता है।
1: मेरे पुराने घर में था।
0: तो हाँ, चूल्हा थोड़ा अलग होता है, अंगीठी थोड़ी अलग होती है, अंगीठी थोड़ी छोटी होती है, चूल्हा थोड़ा बड़ा होता है। ओके, चूल्हे में क्या करते हैं बच्चों? लकड़ी जलाई जाती है, मगर हम इस पे कोयला जलाते हैं अंगीठी में।
1: हाँ
0: कोयला, कोयला मतलब मालूम है? कोल, COAL, कोल, उसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है।
1: हाँ
0: ज्योग्राफी में पढ़ा है,
1: हाँ
0: भूगोल की कक्षा में पढ़ा है, हाँ पढ़ा है ना। तो लेखक कहते हैं अंगीठी को एक चूहा है जो क्या करता है, वो अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद वो बूढ़ा है, उसे बहुत सर्दी लगती है। ओके, तो इसका मतलब है कि वो चूहा बूढ़ा हो गया है, उसको सर्दी लगती है, इसलिए वो कहाँ बैठता है? अंगीठी के पीछे। ठीक है, मैं किसके बारे में बहुत बात कर रही? एक चूहा, 20 चूहे हैं घर में पिताजी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। कितने चूहे हैं?
1: 20
0: 20 चूहे
1: चूहे
0: हैं, उनमें से एक चूहा कहाँ बैठना पसंद करता है तन्मया?
1: अंगीठी के पीछे,
0: हाँ, अंगीठी के पीछे क्यों बैठना पसंद करता है मुस्कान?
1: क्योंकि वो शायद बूढ़ा है और उसको बहुत सर्दी लगती होगी।
0: हाँ, बहुत अच्छे, ठीक है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। एक दूसरा चूहा है, वो क्या करता है? वो बाथरूम की टंकी के ऊपर जाकर बैठता है। टंकी का मतलब समझ में आया तन्मया?
1: हाँ,
0: बोलो।
1: टैंक।
0: यस, टैंक। बाथरूम के ऊपर टंकी लगती है ना, तो एक दूसरा चूहा क्या करता है? वो टैंक के ऊपर चढ़कर बैठता है। क्यों? क्योंकि उसे गर्मी लगती है ना। जो टैंक है ना, वो टैंक तो ठंडा है ना, टंकी ठंडी रहती है क्योंकि उसके अंदर पानी है। तो एक दूसरा चूहा वहां जाकर बैठता है। क्यों? क्योंकि उसे गर्मी लगती है। ओके, तो ये सब चूहों के बारे में बता रहे हैं लेखक, कितने फनी तरीके से, है ना, कितने मजेदार तरीके से हमारे डेली टू

0: की लाइफ से रिलेटेड, तो उसे शायद बहुत गर्मी लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वे कभी कभी झांक जाती है। बिल्ली है ना, बिल्ली, बिल्ली का मतलब मालूम है ना?
1: हाँ,
0: अंग्रेजी में क्या बोलते बिल्ली को?
1: कैट।
0: हाँ, अंग्रेजी में बोलते हैं बिल्ली को कैट, सबको मालूम है ना। ये जो बिल्ली है ना बच्चों, ये क्या बोलते, पिताजी क्या बोलते, ये बिल्ली को भी मेरे घर रहती नहीं है, मगर वो आती है मेरे घर में, कभी कभी झांक कर चली जाती है, मेरे घर को ऑब्जर्व करके चली जाती है। बिल्ली आती होगी आपके घरों में, है ना?
1: हाँ आती
0: शहरों में बिल्लियां बहुत ज्यादा हैं, आती है।
1: हाँ।
0: हाँ, तो वही लेखक क्या बोल रहे हैं, वो हमारे घर में रहती नहीं है, मगर वो उसको घर बहुत पसंद है, इसलिए वो कभी कभी झांक जाती है, कभी कभी वो आती है झांक कर चली जाती। झांकना मतलब टू पीप, अंग्रेजी में आप जिसको जो टू पीप बोलते हैं ना, उसको हिंदी में हम झांकना बोलते हैं। कौन झांक कर चली जाती है?
1: बिल्ली।
0: बिल्ली। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। अगर उसका मन होता है तो क्या करती है वो बिल्ली?
1: दूध पी लेती है।
0: हाँ, उसको दूध बहुत पसंद है, घर के अंदर वो दूध पी जाती है, इसलिए आपके घर में बिल्ली है तो ध्यान दीजिएगा। ओके, हमेशा, मगर फ्रिज के अंदर नहीं जा सकती बिल्ली। अगर आपने दूध बर्तन में रखा है किचन के अंदर, तो वो आएगी और दूध पीकर जाएगी। तो कभी अगर मन नहीं हुआ ना बिल्ली को, मन नहीं हुआ उसका कि मैं आज मेरे को घर के अंदर नहीं जाना है, तो ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं कल फिर आऊंगी, ये बोलकर चली जाती है। देखो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, बिल्ली का मानवीकरण किया है ना। हमको कैसा लग रहा है, ये बिल्ली भी हमारे जैसी ही है। पक्षी भी अगर इस प्रकार से वर्णन किया जाए कि वो मनुष्य के जैसा है, तो उसे कहते हैं मानवीकरण। ठीक है,
1: ठीक है।
0: आगे चले।
1: हाँ
0: अच्छा, शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार फैलाए कसरत करने लगते हैं, और जैसे ही शाम होती है, मेरे घर के अंदर बहुत सारे वायर हैं, तार हैं, उस तार के ऊपर कई चमगादड़ हैं। चमगादड़ मालूम है आप लोग को? बैट, जिसको अंग्रेजी में आप लोग बैट बोलते हैं, उसको हम हिंदी में चमगादड़ बोलते हैं। वो ना तार के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं, ठीक है, मालूम है? वो लोग आकर बहुत बिगाड़ते हैं, वो लोग कृषि को बहुत नुकसान करते हैं, खेती बाड़ी का नुकसान करते हैं, मगर घर में आकर ऐसा नुकसान वगैरह नहीं करते हैं। तो ये सब हमारे घर के आसपास रहने वाले जीव जंतु हैं, जिसको अपनी डेली लाइफ में हम इनको देखते रहते हैं। तो इसीलिए पिताजी क्या बोलते हैं, जैसे ही शाम होती है, ये चमगादड़ भी आ जाते हैं, ये बैट भी आ जाते हैं, और अपने पर फैला ले, अपने जो उनके जो पंख होते हैं ना, उनके पंख होते हैं, उन पंख को डैने बोलते हैं हिंदी में, वो डैने को स्प्रेड कर लेते हैं और तार के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं। तो जैसे ही वो उल्टे लटक जाते हैं, तो पिताजी क्या समझते हैं कि ये लोग व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसलिए पिताजी बोलते हैं, ये लो अब ये चमगादड़ भी घर में आ गए, पहले से ही तो बिल्ली थी, पहले से ही तो चूहे थे, कौवे थे, मैना थी, गौरैया का प्रवेश नहीं हुआ है। ओके, तो गौरैया भी धीरे धीरे आएगी, तो अब ये चमगादड़ भी आ गए, और घर में कबूतर भी है ना? कौन है घर में? एक चमगादड़ भी है, बिल्ली भी है, आम के पेड़ के ऊपर कौन है?
1: पक्षी
0: पक्षी।
1: है।
0: हाँ, पक्षी है ना? तो बहुत सारे जीव जंतु लेखक के घर में रहते हैं, मतलब इस कहानी में जो पिताजी हैं उनके घर में रहते हैं। तो दिन भर गुटर गु करते रहते हैं। ये जो कबूतर है ना, आपने कबूतरों की आवाज सुनी है?
1: हाँ सुनी है।
0: कबूतर को देखा आप लोगों ने? तो कॉमन पक्षी, हम हमेशा देखते रहते हैं। हमारे स्कूल में उल्लू आते हैं, देखिएगा जरूर।
1: हाँ मैंने
0: हाँ,
1: देखा
0: देखा
1: है
0: है आप लोग हमारे स्कूल में?
1: छोटा सा उल्लू।
0: छोटे छोटे व्हाइट कलर के, सफेद कलर के उल्लू आते हैं, वो बहुत शुभ माने जाते हैं। उल्लू कौन है मालूम है? हमारी गॉडेस है ना, हमारी देवी है ना, देवी लक्ष्मी के वाहन है उल्लू, तो इसलिए उनका घर में आना शुभ माना जाता है। कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कभी कभी कबूतर आते हैं हमारे स्कूल में भी। अब कबूतर को किसका सिंबल माना जाता है, किसका प्रतीक माना जाता है मालूम है आपको?
1: शांति।
0: हाँ, वेरी गुड, कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। ओके, कि चारों तरफ शांति होनी चाहिए, कहीं युद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए कबूतरों को उड़ाया जाता है शांति के प्रतीक के रूप में। सबसे ज्यादा कबूतर आपने एक जगह बहुत फेमस है बॉम्बे में देखा है आपने?
1: बॉम्बे में नहीं गई
0: नहीं
1: हूँ
0: देखा?
1: कभी।
0: नहीं देखा है ना? एक जगह है बॉम्बे में, गेटवे इंडिया के पास,
1: हाँ
0: गेटवे
1: गेटवे।
0: इंडिया के पास आपने कभी कभी तस्वीरों में देखा होगा है ना,
1: हाँ हाँ
0: बहुत सारे कबूतर आते हैं वहां पर, बच्चे और सब लोग उनको दाना देते रहते हैं।
1: हाँ मैं हाँ
0: तो आपने दिलवाले दुल्हनिया नहीं देखी? DDLJ देखी है?
1: देखी
0: हाँ
1: है
0: देखी।
1: देखी
0: हाँ,
1: है।
0: तो DDLJ में जब शाहरुख उसके जो फादर इन लॉ को इम्प्रेस करने के लिए, वो क्या करते हैं, वो कबूतरों को दाना देते रहते हैं है ना? तो
1: हाँ
0: कबूतरों को दाना खिलाना और कबूतरों को किसी ओकेशन पर उड़ाना हमारी संस्कृति में, हमारी कल्चर में शुभ माना जाता है। मगर यहाँ पर उल्टा है, इस कहानी में पिताजी क्या बोल रहे हैं, जब देखो ये कबूतर गुटर गु करते रहते, गुटर गु करते रहते। तो ये गुटर गु क्या है?
1: कबूतर की आवाज।
0: हाँ, गुटर गु क्या है तन्मय?
1: कबूतर की
0: कबूतरों की
1: आवाज।
0: आवाज। पिताजी को कबूतरों की आवाज उतनी अच्छी नहीं लगती। तो इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं, बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। ओके, पिताजी क्या बोलते हैं, ये सिर्फ कबूतर नहीं है, अब तो घर में छिपकलियां।

0: यहाँ भी, आप छिपकली तो सब जगह रहते।
1: हाँ
0: क्या इसको छिपकलियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग?
1: लिजर्ड,
0: लिजर्ड्स बोलते हो ना, उसी को हिंदी में छिपकली बोलते हैं, मालूम है आप लोग को?
1: मालूम है।
0: हाँ, तो आपने देखी होगी ना, सब जगह रहती है, कॉमन लिजर्ड तो सभी घरों में रहती है। तो इसलिए पिताजी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, चलो ये घर में छिपकलियां भी हैं, कॉकरोच भी हैं, बर्रे, बर्रे को उसको बोलते हैं हम लोग तिलचट्टे, कॉकरोच, ओके, और चींटियों, माय गॉड, चींटियों की तो पूरी आर्मी है मेरे घर में, ओके, फौज, फौज मतलब आर्मी।
2: आर्मी,
1: आर्मी।
0: जो बच्चों ये फौज जो है ना, ये उर्दू वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड भी है, मालूम है इसे हिंदी वर्ड? नहीं मालूम, मैं बताऊं?
1: हाँ,
0: सेना,
1: सेना,
0: अब समझ में आया? बोलो सेना,
1: सेना,
0: सेना। हमें उर्दू भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, मगर हमें थोड़ी हिंदी भी अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है?
1: ठीक है,
2: ठीक है।
0: तो पिताजी क्या बोलते हैं, इस घर में तो चींटियों की फौज है, फौज पूरी, जब जहां देखो वहां चींटियों की आर्मी है, चींटियों की सेना है। वो अपने घर के अंदर की बात बता रहे हैं। अच्छा, तो ये सब इसके बारे में ये कौन बोल रहा है कि मेरे घर में ये भी है, मेरे घर में तिलचट्टे भी है, मेरे घर में बर्रे भी है, ये कौन बोल रहा है बच्चों?
1: पिताजी बोल रहे हैं।
0: हाँ, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। और एक दिन क्या हुआ बच्चों, दो गौरैया सीधी उनके कमरे के अंदर, पिताजी के कमरे के अंदर आ गई और उनसे बिना पूछे, ये तो पक्षी है, उन्हें बोल सकते हैं क्या? बोलो, हमारी परमिशन पूछ सकते हैं क्या?
1: नहीं बोल
0: नहीं बोल
1: सकते।
0: सकते ना। तो पिताजी क्या बोल रहे हैं, देखो ये गौरैया सीधी मेरे घर के अंदर आई और इन्होंने मुझसे अनुमति भी नहीं मांगी, और बिना अनुमति के, बिना परमिशन के, ये पूरे घर को ऑब्जर्व कर रही है। सो निरीक्षण मतलब देखना, टू ऑब्जर्व, ओके, निरीक्षण। तो कौन कर रहा है ये निरीक्षण बिना अनुमति के?
1: गोरिया,
0: गौरैया के
1: गोरिया।
0: बारे में बता रही हूँ मैं आपको। एक दिन क्या हुआ बच्चों, उस मकान में, उस घर में जहाँ पिताजी हैं, माँ हैं और एक बेटा है, उस घर के अंदर कौन आई? दो गौरैया आई, और दो गौरैया बिना किसी परमिशन के आई, बिना किसी अनुमति के आई, ओके। उन्होंने पिताजी से अनुमति नहीं मांगी, इसलिए पिताजी को गुस्सा आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि इन दो गौरैयों ने मेरी कोई अनुमति नहीं मांगी और घर को आराम से देख रही है, बहुत अच्छे से देख रही है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है कि कहाँ रहें, क्या करें, है ना? तो मकान का निरीक्षण कर रही है, मतलब मकान को देख रही है। कौन देख रहा है मकान को?
1: गौरैया,
0: हाँ, कितनी है गौरैया?
1: दो
0: दो गौरैया। तो इस पाठ का नाम
1: दो गौरैया।
0: हाँ, दो गौरैया, कि वो मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जब बैठती हैं, तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे उड़ गई, ओके। तो वो मकान को बहुत सूक्ष्म तरीके से देख रही है, क्यों? क्योंकि उन्हें अपना घोंसला बनाना है, वो यहाँ पर रहने आ गई हैं। अब कौन रहने आ गई हैं अब यहाँ पर? दो गौरैया। इसीलिए वो बहुत ऑब्जर्व कर रही हैं, एक जगह से उड़ रही हैं, दूसरी जगह जा रही, देख रही हैं, भाल रही हैं कि कहाँ अपना घोंसला बनाए। इसीलिए कभी किसी खिड़की पर जाकर बैठ जाती हैं, कभी किसी खिड़की के ऊपर जा बैठती हैं, ओके। तो रोशनदान, रोशनदान का मतलब खिड़की, खिड़की का मतलब
1: विंडो।
0: हाँ, जिसको आप लोग विंडो बोलते हैं उसी को हम हिंदी में बोलते हैं खिड़की, और उर्दू में बोलते हैं रोशनदान, तो
1: ठीक है।
0: भूलिएगा नहीं,
1: हाँ
0: ठीक है? लिखते समय आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ओके, लिखने के समय आप रोशनदान भी यूज कर सकते हैं, खिड़की भी यूज कर सकते हैं, लिखने के समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। मगर आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि ये उर्दू का वर्ड है कि हिंदी का वर्ड है, ठीक है,
1: ठीक है।
0: ओके। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा, कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे उड़ गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है। तो जैसे ही वो आई थी, उन्होंने, गौरैया ने देखा कि उनको कहाँ बैठना है, क्या करना है, उन्होंने देखा और देखकर उड़ गई, ओके। मगर 2 दिन के बाद पिताजी ने क्या देखा, पिताजी ने देखा ऊपर जो फैन होता है ना, पंखा होता है ना, फैन तो अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है? तो फैन को क्या बोलते हैं हिंदी में? पंखा। पंखे के बीच में जो गोला होता है, उस गोले के थोड़े ऊपर थोड़ा स्पेस होता है ना, थोड़ी जगह होती है,
1: होती।
0: उस जगह पर उन्होंने अपना बिस्तर बिछा लिया। बिस्तर मतलब
1: बेड।
0: हाँ, ओके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। किसने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया?
1: गौरैया।
0: गौरैया ने। जैसे ही वो पहले आई, उन्होंने क्या किया गौरैया ने?
1: घर का पूरा जांच किया।
0: हाँ, घर का पूरा परीक्षण किया, घर को चेक किया। क्यों चेक कर रही थी वो घर को?
1: घोंसला बनाने के
0: घोंसला
1: लिए,
0: बनाने के लिए ना, कि कहाँ बनाए। और उसके बाद उन्होंने एट लास्ट कहाँ पर घोंसला बनाया?
1: पंखे के ऊपर।
0: हाँ, पंखे के ऊपर। पंखे के बीच में जो गोला होता है ना, उस गोले के ऊपर जो थोड़ी सी जगह होती है ना, वहां पर उन्होंने अपना बिस्तर बिछा लिया, ठीक है? और सामान भी ले आई, और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही है। वो अपना सामान सब कुछ लेकर ले आ गई। अब जब घर बनाए तो सामान भी तो होगा ना भाई। अब हम अपना घर बनाते तो क्या हम अपने घर में सामान नहीं
1: रखते
0: रखते
1: हैं।
0: हैं? वो लोग भी अपना सामान लेकर आई गौरैया, और उन्होंने क्या किया, अपना सामान वगैरह उन्होंने अच्छे से ठीक कर लिया और बैठ कर अच्छे से गाना गाने लगे।

0: ओके, तो वो अपने आप को एंजॉय कर रही, तो वे कौन एंजॉय कर रहे अपने आप को?
1: दो घर है,
0: घर
1: दो
0: है।
1: घर है।
0: तो अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद बच्चों।
1: धन्यवाद अध्यापिका जी।
2: अभी तक आप सुन रहे थे हिंदी पाठ। अध्यापिका थे अनुपम रेशमी, छात्राएं थी तन्मया पिल्लई और मुस्कान जिशार। इसी के साथ आज का हिंदी पाठ यही समाप्त होता है। नमस्कार।

0: ഇപ്പോൾ സമയം 6 മണി കഴിഞ്ഞ് 19 മിനിറ്റും 55 സെക്കൻഡും. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ വാർത്തകൾ കേൾക്കാം. ഡൽഹിയിലെ
1: ഇയം ആകാശവാണി സംപ്രതി വാർത്താഹ ശ്രൂയന്താം. പ്രവാചകഹ ജതിന ശർമ്മ. आदौ मुख्य वार्ताः. केन्द्रीय सर्वकारः संसदि नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये सारगर्भां चर्चां विधातुम् अंगीकृतवान्. तथापि विपक्षस्य श्रान्तं कोलाहलेन प्रावृत सत्रस्य तृतीयेपि दिने उभयोः सदनयोः कार्याचरणं स्थगितम्. सोमवासरे संसद्भवनं प्रति आन्दोलनं कुर्वत्सु प्रदर्शनकारिषु आरक्षकैः कृतायाः अत्यधिकबलप्रयोगस्य आशंकायाः प्रकरणे देहली उच्चन्यायालयः केन्द्रसर्वकारात् देहली आरक्षकविभागाच्च स्पष्टीकरणम् आहूतवान्. फिलिपीन्स देशस्य मनीला नगरे समायोजिते क्वाड मञ्चस्य वैदेशिक मन्त्रिणाम् उपवेशने मन्त्रिभिः मुक्त उन्मुक्त समावेशि हिन्द प्रशांत क्षेत्राय स्वकीया प्रतिबद्धता पुनरावर्तिता. असमराज्ये भीषण जलप्लावेन स्थितिः अद्यापि अत्यन्तं गभीरा वर्तते, यत्र जलौघे मृतकानां आहत्य संख्या संवर्ध्य 31 सम्प्राप्ता. अपि च चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यापराह्णे वारद्वयस्य ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः स्वस्यैव देशस्य उन्नति हुड्डां पराजित्य द्वितीय चक्रं प्राविशत्. अथ वार्ताः विशदीकृत्य. नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणम् अथ च छात्राणां विरोध प्रदर्शनम् समेत्य विभिन्न प्रकरणेषु विपक्षिणां तृतीय दिवसेपि सदस्यानां अविरत कोलाहलत्वेन संसदः उभय सदनयोः कार्याचरणं स्थगितम्. अपराह्णे 2 द्वितीय स्थगनात् परं यदा लोकसभायाः कार्याचरणं पुनरारब्धं तदा विक्षेपेण नीट प्रकरणमधिकृत्य उच्चैः कोलाहलो विहितः. अत्रांतरे सदनेन तृणमूल कांग्रेस दलस्य सांसदः कल्याण बैनर्जी इत्यस्य वर्षाकालीन सत्रस्य शेषावधेः निलंबन प्रस्तावोऽपि पारितः. पीठासीनः कृष्णा प्रसाद टेनेटी न्यगादीत् यत् कल्याण बैनर्जी इत्यसौ महिला सांसदानां विरुद्धं आपत्तियुक्ताम् असंसदीय टिप्पणीं विहितवान्. घटनेयम् आपत्तियुक्ता सदनस्य मर्यादायाः विरुद्धा च इत्यपि सः प्रावोचत्. संसदीय कार्य राज्यमन्त्रिणा अर्जुन राम मेघवालेन एषः प्रस्तावः उपस्थापितः, यश्च ध्वनिमतेन पारितः. निरन्तर कोलाहलेन पीठासीनाधिकारिणा लोकसभायाः कार्याचरणम् आगामि दिनं यावत् अपवारितम्. राज्यसभायामपि एतादृशः एव दृश्यः दृष्टिम् अगात्. अपराह्णे 3 तृतीय स्थगनात् परं यदा उच्च सदनं समवेतं तदा विपक्षिदलानि नीट विषये अन्य प्रकरणेषु च विरोधं प्रादर्शयन्. उपसभापतिः हरिवंशः अवदत् यत् सर्वकारः नीट विषये चर्चायै सज्जः अस्ति, विपक्षेण च सदन संचालने सहयोगः करणीयः. उच्चसदने भाषमाणः संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः कांग्रेसदलेन नवीनान् पक्षाश्रयानारोप्य सदने चर्चायां विघ्नोत्पादनाय प्रत्याक्षिपत. अविरतकोलाहलस्य मध्ये उपसभापतिना राज्यसभायाः कार्याचरणमपि आगामि दिनं यावत् स्थगितम्. इतः प्राक् संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजु उदघोषयत् यत् सर्वकारः नीट प्रश्नपत्र गोप्यताभंग विषये सर्वविधां विचार विनिमयं कर्तुं पूर्णतया सन्नद्धो वर्तते. राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय रिजिजुवर्यः सबलम् आग्रहम् अकरोत् यत् सर्वकारः सर्वानपि पक्षान् समेत्य एकाम् उच्चस्तरीय चर्चाम् इच्छति.
2: सरकार नी पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है. मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है. माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए.
1: दिल्ली उच्च

0: ഇപ്പോൾ സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ 44:55. ഇനി 8:45 സമാചർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹിയിലെ.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए. सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार. युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित. विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की. दिल्ली उच्च न्यायालय

0: ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में

0: ने उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के एनएसपीसी की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और एनएसपीसी ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में

0: में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावासकेस से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue. In Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of the Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police on pleas alleging use of excessive force on protesters during Parliament March. Railway Minister Ashwini Vaishnav says train accidents declined sharply with improved rail safety. Infrastructure